नमो पै भूले सुत दरा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत

अजुनी सैभं गुरप्रसाद कल आई कुत्ते मोहि खाज हुआ मुर्दार गुसाई।

जो लर दीन के तो पुरजा पुरजा कट मर कब हूना छड़ खेत सूरा सो पहचानी है जो लर दीन के तो पुरजा पुरजा कट मर कब हूना छड़ खेत बेशुमार अथा अगणत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै जुगो जुग अटल दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने बड़ा तरस कीता है अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठण दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन अस्थानां तों सरवण करदियां हो उन्हां चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए जिथे चल रहीआं लड़ीवार शब्द विचारां नूं आपां गुरु मत मुताबक विचारना उत्थे नाल नाल अज तों साका नीला तारा जो कला घलूकारा तीसरा घलूकारा वापरता है उस घलूकारे दे इतिहास नूं भी आपां दिन ब दिन एक तों अज तों लैके 6 जून तक जिवें गुरु साहब बख्शिश करन तिवें तिवें आपां विचारन दा यतन करांगे। विचारण की आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण मालक जी आप रसना नूं बल बख्शण रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी और इतिहास दियां विचारां सतगुरु आप करवा लैण आप सरबत संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र

0: हर हर इच पुनी हमारी।
1: वजी वधाई मन शांत आई, मन नू टका आ गया, मन दे अंदर खुशी दे वाजे वज पए। मिलिया पुरख अपारी, ओ अपार ओ अकाल पुरख मिल गया। बिनवंत नानक सिमर हर हर, कहिंदे नानक जी बेनती करदे ना, बिनवंत बेनती करदे आ, सिमर हर हर, कहिंदे उस अकाल पुरख परमेश्वर नू सिमरदे आ। इच्छ पुन्नी हमारी, साडियां इच्छावां जिहड़ियां ओह पूरियां हो गईआं, मन दीआं कामनावां पूरियां हो गईआं, मन नू सहज मिल गया, मन नू टका मिल गया, मन कोल सच आ गया। जिद्दण मन नू सच मिलिआ, मन टिक जांदा है। सच दा आसरा, सच दा सहारा ही औखा है। सच सुनना भी औखा है, सच बोलना भी औखा है, सच ते पहरा देना भी औखा है। कम तिन्नों ही औखे ने, पर एक बारी जे किते मन सच उत्ते बहना टिक जाए, बहना सिख जाए, फिर सच बोल भी जांदा है, सच सुन भी लैंदा है, ते सच ते पहरा देण लई खड़ो भी जांदा है। सच उत्ते मन टिक जाए किते, सच उत्ते मन दा भरोसा बन जाए। जिहदा भरोसा सच उत्ते बन गया, साहिब कहिंदे इच्छ पुन्नी हमारी, फिर उत्थे कामनावां पूरियां हो जांदियां ने। नाल नाल आपां इतिहासक दिन नूं भी विचारदे चलीए। वापरिया तीजा घल्लू घारा, सिख नसल कुशी कह लो, क्योंकि विनाश ते मारिया ते टारगेट ते दस्तारा ही कीतियां ना। तुसीं किते घल्लू घारे दे दिनां दा इतिहास फरोल के वेखो जी, किसी एक लिखारी नूं नहीं, बड़े लिखारियां ने इहदे उत्ते अपनी कलम दे नाल इतिहास उकरिया, बड़े लिखारियां। किते पढ़ीए ना इतिहास, ते ओ बोल चेते आउंदे ने भी चढ़िया महीना जून दा, साडे कालजे पाउंदा शेक, तूं लंबू लाया तख्त नूं, सानू अज वी देंदा सेक। किते ना किते ओ तख्त नूं लगी हुई अग, ओ तख्त उत्ते चले हुए गोले अज वी साडे मनां नूं सेक दिंदे ने। ना असीं संताली भुल्ले, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਨਾ 84 ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ 47 ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਗਏ, 84 ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ 84 ਵੀ ਹੰਢਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ

ने अमृत वेले तो खुले दर्शन ददारे बख्शे आप जी दे हजूर शहीद संघा नूं समर्पित अमृत वेले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचार गुर इतिहास छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियां सेवा संभाल करदियां अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां रे अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी अगांह तों समत बख्शनी दारे आई हुई संगत दी हाजरी दा प्रवान करनी तिल फुल पेटावां दर मंजूर करनियां यात्रावां सफल करनियां जी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजिर है दर परवाह नूं वे परवाह नया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन जाण दी समर्था सूझ बख्शनी

दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसम्मदी नूर अरशह कोर शह चटी तुद डिठे सचे पातिशाह

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ

ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना परवरिया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना परवरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन, हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा, सब त्या वहीं सब त्या वहीं तुद जी, हर सच्चे सिर जनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्या वह संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार बिरंबे अंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर ते आवहे हर ते आवहे तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैनो हर ते आया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहीं जपहीं बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरत जी, तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई, रहाओ सब तेरी तू सवनी ते आया।

राया कोहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हद रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचाबो हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबैरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखा मारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आभा दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निमरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख लियो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपथरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन पर काशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने घड़ घड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तव देह अपारा जब आ कर्ख कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आब आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बिदा ताको कृपाहण अनुमानत
महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह भिव, आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहोर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट पयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जोगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता, जे अस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताके ताप तनक मैं हरहो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल फांसते ताहे ओबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें, हम एक ना जान्यो,

दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर दां तेरे सब किचे है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे।

भगवैया कर शांत सुख मन आए बसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक त सुख होआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे।

रे को गुण नाही, आपे तरस पायोई, तरस पाया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे आ, तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ।

तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊच। सगल समग्री तुमरे तुमते हो ऐसो

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕਿਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਵਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਨੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕੋਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਪਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਆਹਿਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾਹ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦਸਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਸੀ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚਾ ਵਿਪਰਵਾਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚਾ ਵਿਪਰਵਾਹੋ। ਰਹਾਉ
दुनिया केरी दोस्ती, मनमुख दजे मरन, जम प्रबदे मारिए विलाना लहन। गुरमुख जन्म सखारता, सच्चे शब्द लगन, आत्म राम पर गस्या सहज सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना भुख ना उतरे अणदिन जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटुंब सियों सगले कुल डोबन। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन। मौका ले तिना निंद का नरके कोर पवन। ए मन जैसा सेवै तैसा हो वाहे, तेह कर्म कमाए आप भी आपे ही खावना। कहना किछू न जाए मां पुरखा का बुलना, होवै किते परथाए ओए अमृत भरे भरपूरे है। ओना तिल न तुमाए गुणकारी गुण संगरे, अवरा उपदेसें सेवट भागी जे ओना मिल रहे। अणदिन नाम लयन देसी रिजक संबाहे, जिन उपाई मेदनी एको है दातार। सच्चा आप तनी सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल ले। सो प्रभ सदा समाल मन मेला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए प्रभ मिले ता मिल रहे। हम में शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे, त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे। गुरमति विचार सतगुर मेलता मिल रहा, सच रखा उरतार मिलया होए ना बिछड़े। गुर के हेत प्यार फिर साला ही अपना, गुर के शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया। शोभा वंती नार मनमुख मन ना पिजई, अत मैले चित कठोर सपे दुद्ध पियाईए। अंदर विसन कोर आप करे किसे आखिए, आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे। ता सच बनया सिंगार सच्चा शाओ सच्चे बन जारे, ओथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावई। दुख ही माए पचन होमे मैला जग फिरे, मर जम्मे वारो वार पे किरत कमावना। कोई न मिटन हार संता संगत मिल रहे, ता सच लगे प्यार सच सलाई सच मन। दर सच्चे सच्चे यार गुरपूरे पूरी मत है, एनस नाम ते आए। ओम में मेरा वड रोग है बिचों ठाक रहाए, गुरसाला ही अपना निम निम लागा पाए। तन मन सौंपी आगे धरी बिचों आप गवाए, खिंचो तान बगुच्चिए एक स्यों लिबलाए।
हों में मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए, सतगुरन मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन, से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकण पल्लरन गुण की साज करन, गुण की साज सुख उपजे सच्ची भगत करें, सचवन जे गुर शब्द स्यों लाहा नाम लहिन, सोई न रूपा पाप कर कर संचिए, चले न चल दिया नाल बिन नामे नाल न चल सी, सब मुठी जम काल मन का तो सहर नाम है, हृदय रखो संवार एक खर्चे अखुट है, गुरमखंड बहे नाल ए मन मूलों भुलिया, जासे पत गवाए एह जगत मोहे दूजे व्यापिया, गुरमति सच ते आए हर की कीमत ना पवे, हर जस लिखण न जाए गुर कै शब्द मन तन रपे, हर सोरे समाए सौ सौ मेरा रंगला रंगे सहज सो पाए, कमण रंग ता चढ़े जा पिरके अंक समाए, चिरी बिछुन्ने पी मिलन जो सतगुर सेवन, अंतर नव निद नाम है खान खर्चन नान खुट्टई, हर गुण सहज रमन नावे जन्मे नाम हरे, नावे दुख सहन गुर राखे से उबरे, हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना बिछुड़े, जे अंदन मिले रहन इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन सज्जन मिले ना बिछुड़े।

अंत न लइय, ते नर सेव नो करै, ते नर सह सहस समपै, ते नर दुलीचै बह, ते नर उथप बिथपै, सुख ले ते नर संसार में, अबै पट रिप मत दे, सक्याथ ते नर जालप पणै, गुर अमरदास सो प्रसन्न जह, तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैन बैन मोह एक एक दोहों ठाए ना जानियो, सुपन एक पर तख एक इकस मै लीनो, तीस एक अर पंज सिद्ध।

तिन दुख दर दर पर हर पर चित चित वो अरदास कहो पर कह पे न सको सर्ब चिंत तुझ पास साध सर

मिल संगत धन धन करहो जे सतगुर लग प्रभ पाइयै सो सतगुर सिमरो नरहो जे सतगुर लग

संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच माना दर सच्चे सच्चार।